प्रहार समय के सहती रही, दूर शून्य में जुगनू जैसा एक पखेरू उड़ता दिखा, शायद कोई